का भौर को चौरासी आकर घूमने घूमने मानव को छोड़ा पाएंगे तो भर मन पाएंगे नाराई।

आकाश मार गरी कुजे रान मारो रे सीता जी कहे की भाई काना फेरा पुनिया कलम जल्दी गई सुरसा दिल की रोशे सामने हनुमान का ये वंश मान।

0: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: रेडियो सैलून सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलून समाचार को सहयात्री।

0: खड्का, माधव खड्का र अमृत बहादुर खड्का, ढाल बहादुर खड्का अध्यक्ष, पुवार खड्का कुलकुचा व्यवस्थापन समिति मारबुटार दोलखा।
1: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।
2: इकाली मुस्लो भयंकर उस सलकन था की सलकाऊ था जो आगो हो जो आगो।

बीमा को लाभ दिए आपको कमाई को लाभ लिने मौका आज बनो सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अभिकर्ता सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले रजियों।

नमस्कार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 MHz बाट म बद्री प्रसाद सापकोट आज विक्रम सम्बत 2083 साल शुद्ध ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष सन् 2026 मे 14 तारीख वैशाख 31 गते बिहीबार द्वादशी 6:46 मात्र अब स्तुति गरौ आयु द्रोण कुमार कैसरी हो साक्षेण कल्पय भरी।

0: सामुदायिक पहुँचका लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।
1: मेरो नाम सुविधा पोखरेल जफेबाट आको म। एउटौ शंख कपाला भूषित करौ मालस्ती माला धरौ देवौ द्वारौ तिस्मशान ननिलौ नागरी गोवर्धनौ तिरिदक्षे बलिदक्षे।

आदौ देवकी देव गर्भ जननी गोपी गिरे वर्धनम माया पूतनम जीवतापहरणम गोवर्धनम धारणम कंसैवादी छेदनम कौरवादी हरणम कुंती सुतौ पालनम यो तत्त्व भाग।

नारद वंशन ए मुना गायरा शुद्धवै व्रत वसा शक्तिले मधुबान रायराय।

0: एक बात बोले श्री कालिका माई भगवती की
1: जय,
0: भक्तर भगवान की
1: जय,
0: भक्त वत्सल भगवान की
1: जय,
0: सारा भक्त प्राणी की
1: जय।
2: सम्राट महाते पांडव भाषण कुमा भाषण कालिका गौर से गरुण दाना बहारू नाकमा रावण नासिका संत।

0: पड़ो घर में जुन व्यवहार काटी जाती है एक एक काटी नाशियो
1: साजन बेत समस्ता दाजो भाई मैं नाम अधिकारायो पन्न वज कविता प्रसन्न मनाले संक्षेपी भारत आयो।